0: Tech Talks.
1: मैं प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तक दक्कम फंसे हैं गोते? मियोती फाहिपे ऐप। बिल तक अंगारा जुमला अदु फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोल्ला। देंगा महुरिया बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी। फोन, फेंग, गैस अदि मीडिया नेट बिलकस देख ने। रीलोड, रास्टस नुनी डेटा पेक्वस नेगे नेंगे। मी हम डिजिटल वॉलेटे। देने मस देबावायरु बिलनु देखिगें लारिया वीनुए नेंगिगें उलेक नुझे ने। हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाहिपे मा फाही।
3: टेक के दुनियां अलगन में खोगे म्योलनी कितन पन दतरुकं हंदां हुरी कितन पेफुलं तो। मी सुवाल के जवाब दतरु निमुंगे कुरिं अलगन त्याय हुं तेरी ना हिस्सा कुराना। टेक्नोलॉजी या साइंस के दायरा में बड़े ती कुंफनी तक उनके नमंदा बदल तक बलानु ला दू कोल्लो मकी कुरम वाने वारो के कमेनो मैं हफ्ते खास टेक के एमएफओ के खबर तंग डुआ हाला तेवे फ्रंट तैयार तो

0: हांगार
1: हांगार दो मिंदुर कोरी इकार गड़ फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूं आदि बुद्ध दो होगे रे मिंदमो पार गड़ तेरी हूं
0: हांगार
2: हमें कनी दिवे राज्य कड़ू

0: mamma, badu haveje.
1: Tarifla, Sonia ka tibuni. Mamma ibeche mige muluwa.
0: Papa, gaadi jehaniye.
2: Tarifla madu kobbada.
3: Sonia, debal maasha school anda.
4: तुम्ही नहीं तो कहा था कि सच्चा प्यार सबसे बड़ा होता
0: मामा
4: किस से भी?
5: मामा फोन एक हाँ मादमारे तैयार दाम भी था ना कड़ी वाइपर कराना
0: मामा वैस फोन का डोंटा
6: कोको दोनते कमी कर निकाले नूले वेने दे सोनिया गाता
7: एहे नियं गुलुंता बदहे कुराफदान एम गातुगावा गुलुंतका एम फुरतम इसकंदेमा